इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ुम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शुक्रवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी आप सुन सकते हैं और हर एक इंटरनेट रेडियो की जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार अबीन, यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। और आप सभी सुनने वालों को मालूम है भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरी हरन की आवाज में सुबह सुबह लो सियू का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त ब्रांड।

रेडियो SBS की सर ये सुंदर भजन हरि हरन की आवाज में पेश की गए सुबह सुबह लो शिव का नाम। अभी आपने सुना सुंदर सा भजन जो हर सुबह सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम में अगला भजन जो पेश होगा नरेंद्र चंचल की आवाज में, एक सुंदर सा माता जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

जिसमें इसकी सही सुंदर भजन उस प्रोग्राम में नरेंद्र चंचल की आवाज में, नरेंद्र चंचल की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है, तो चले ये सुंदर भजन बस प्रोग्राम में मिलकर सुनते हैं।

दर्शक भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए रेडियो SBS का भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है सुंदर भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सुंदर भजन जो सोनू निगम की आवाज में पेश किया जा रहा है। हमारे सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार किया है आप सभी के तार के लिए लाख लाख धन्यवाद। सभी को शुभ सुबह शुभ दिन भी पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से।

निगम की आवाज में सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। रेडियो एसबीएस के जरिए जरूर

आवास में सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पीस की गए है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप के आवास में श्री महालक्ष्मी आरती बस प्रोग्राम में पीस किया जा रहा है और आरती भजन पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल, टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। अरिजीत सिंह एंड सुनिधि।

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में श्रेया घोषाल और जावेद अली प्रोग्राम में।

की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए फिल्म शोबिस की ओर है। शान और अब की बार श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

शुरिया की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म शोबिस, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गीत पेश किया जा रहा है।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सभी कामों काज के लिए। रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 032-65-60-65-60। अनुराधा पोटवाल और कुमार सानू प्रोग्राम में। फिल्म का नाम शुक्रिया।

दंगली खान और साथियों की आवाज में ये जनमस्त प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हसरो मीठे के गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए एक बार फिर से राहत जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। साथ में होगा श्रेया घोषाल।

फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना आज के प्रोग्राम में अलका जी की आवाज में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है सोल्जर।

0: ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुने लाइव के जरिए ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शहर यूट्रेक्ट से ये प्रोग्राम सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में
1: तुझसे अब मुझे मरना है
0: राहत जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले हम आपको ले चलते हैं मुकेश के बाद लता जी की ओर, लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई। लता मंगेशकर के बाद मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना फिल्म का नाम जब जब फूल खिले।

weer. Sudhavalu Radio SBS का वेबसाइट radiosbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए बहुत सी सुनने वालों है जो हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए बस भी सुनते हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा सुनने वालों अपना मोबाइल फोन के जरिए मोबाइल टेलीफोन के जरिए इसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं radiosbs.nl।

साधना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में, पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। चले एक बार फिर से लता मंगेशकर की ओर। लता मंगेशकर की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म बॉबी का एक गाना पेश किया जा रहा है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: मुझे कुछ कहना है
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम बॉबी, बॉबी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। गाना कब उठा मुझे कुछ कहना है और अब की बार मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में। चलिए मुकेश की आवाज में एक और खूबसूरत गाना साथ में होगा लता मंगेशकर। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म बरसात की ओर, और गाना का बोल है पतली कमर है।

रेडियो इसकी जरिए मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था बरसात, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चले आज की प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में। हम आपको ले चलते हैं फिल्म चोरी चोरी की ओर।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में मन्नत डे और लता मंगेशकर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम मदर इंडिया की ओर। उसी फिल्म का ये गाना मरहू

रफी की आवाज में खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में फिल्म नसीब की ओर। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज में

किशोर कुमार आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। फिल्म का नाम नसीब, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गए। तलत महमूद और गीता दत्त की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना जो पेश की गई तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। चले प्रोग्राम में मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की इस प्रोग्राम में आपके बार ये गाना पेश किया जा रहा है मुकेश जी की आवाज में, जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

यू एस बी एस के जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में लता और मोहम्मद रफी की आवाज में। चलिए फिल्म भरोसा की ओर मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए मुकेश और सुलक्षणा पंडित की आवाज में ये गाना बस आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है महेंद्र कपूर के आवाज में।

फिल्म का नाम दहलीज, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सुन वालो रेडियो SBS का स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, और वो भी मोहम्मद रफी की आवाज में। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

श्री मोहम्मद रफी और खास तौर पर आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना मोहम्मद रफी की आवाज में पेश किया जा रहा है। गाना होगा फिल्म का नाम दो दिल, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज

सभी सुनने वालों की सेवा में ये दूरियां गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था लव आजकल। रेडियो वेस भी इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बेनी दयाल और शरारा पंडित की आवाज में ये गाना।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले हम आपको ले चलते हैं सोनू निगम की ओर आज की इस प्रोग्राम में। लव इन नेपाल फिल्म का नाम सोनू निगम प्रोग्राम में।

सोनू निगम की आवाज में ये गाना बसो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था लव इन नेपाल। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की ये प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में शान की आवाज में शान की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: यू एस बी एस की जरिए श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। इसी तारीख नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। तो चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है एक बार फिर से आज की प्रोग्राम में शान की ओर हम आपको ले चलते हैं।
1: कहाँ से ढूंढ कर लाते हो तुम ये सब प्राचीन वर्ड्स?
2: जहाँ से मैं आया हूँ।
1: ओह, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
2: प्यार।
1: जस्ट अ टिप, हमारी दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, क्यों ना?

इस सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में शाम के बाद अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में एक और खूबसूरत सा गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

उदित नारायण की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और हमारा आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार एक गाना सोनू निगम की आवाज में द फिल्म मदहोशी पेश किया जा रहा है।

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है वजीत और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

बसने वालों की सेवा में। चलिए कुमार सानू और अलका जी की ओर, मैं खिलाड़ी टू अनारी फिल्म का नाम अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है।

0: जनाब उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरों भी देखिए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गए है।
1: कल तक मुझे थी ना खबर।
0: अब की बार सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में गाना

सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना पेश की गए, मैंने दिल तुझको दिया। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं। बहुत सी सुनने वालों आपके साथ रेडियो SBS का प्रोग्राम इस वक्त

रेडियो SBS के जरिए अलका एन कमल खान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में।

ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई है। चलिए गाना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में। सुमन कल्याणपुर एंड मुकेश की आवाज में

भी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना जो प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना जो पेश किया जा रहा है, पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आपको हम खबर करना चाहेंगे, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0362 66 66 11। इसी तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। तो चले प्रोग्राम में पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

जनाब स्पीच की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना परमेश्वरी मोहम्मद रफी की आवाज में और बेहद पसंद किया है। तो चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं गाना जो आपकी बार पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी खासतौर पर मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में, मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। अब की बार फिल्म अमर दीप का गीत सुनते ही रहे।

पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्म 20 साल बाद, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, ओरिजिनल हेमंत कुमार का गाया हुआ गाना। चले प्रोग्राम में तलत महमूद और लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार फिल्म छाया की ओर हम आपको ले चलते हैं। 0302 62 66 11 स्टूडियो का

रेडियो वेस में इसकी जरिए छाया फिल्म का गीत बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में ये गाना पेश हुआ है। चलिए फिल्म स्कूल मास्टर की ओर एक बार फिर से तलत महमूद और लता है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए फिल्म फंतोस की ओर। किशोर और आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

और मैं पैदल, तू हो ठेले पे और मैं पैदल। हमने किसी पे डोरे डालने हैं, वो डोरे।

पद्म श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले फिल्म पत्थर की सनम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन वालो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365 65 65 60। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशलि क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशलि क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-2-62-66-11. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-2-65-65-60. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag en dat is...

मेरे हम सफर, क्या तुझको इतनी सी भी है खबर इस खुशामदोर अखिल सचदेव एंकॉम आयो द फिल्म बद्री की दुल्हनिया आयो द फिल्म मैंने दिल तुझको दिया कम खुशामदोर सोनू निगम एस सुनिधि चौहान मैंने दिल तुझको दिया इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS।

0: हो गए।
1: हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया इज द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हम तुम पे मरते हैं, खुशहुदूर लता मंगेशकर एंड उदित नारायण। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई इस आयुध फिल्म चल मेरे भाई एंड इस खुशहुदूर अलका याचिक एंड अभिजीत। चल मेरे भाई इस फिल्म फन संजय दत्त, करिश्मा कपूर एंड सलमान खान। चोरी चोरी इज इट फोन लीजिए इन इट प्रोग्राम गीतों की लहर फिर रेडियो SBS।

आज रपट जाए तो हमें ना भुलाइयो इस द फिल्म नमक हलालन इस गजल दौर किशोर कुमार एंड आशा भोसले. Uit de film Pagelpanti komt dan het volgende liedje via Radio SBS. Gezongen door Jojo Hanisingh Tumka.

हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा।

0: चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल, बिजली, तितली, जुगनू, कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा। हुसैनुद्दीन जगजीत सिंह एंड अलका याज्ञिक हेफ्ट यू गहोर्ड आउट द फिल्म तरकीब एंड आउट द फिल्म सारे सपने। कम्प अपने हुसैनुद्दीन अलका याज्ञिक दे सकेर जरा जरा सी बातें तेरी मुझको याद आती हैं।
1: हसीन लम्हे, शरीर लम्हे, शर्मीले लम्हे, झिझकते लम्हे, पिघलते लम्हे, धड़कते लम्हे, मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं न हल्के होते हैं।

छोटे मियाँ लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड अतिथि नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑप हेट पोडियम बलेव एन अनवर्गेटलिके अवंड वोल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्रखतिगे म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फन टॉप निवो रुक जाओ दिल दीवाने सोंदाग 15 नोवेम्बर सोंदाग 15 नोवेम्बर इन रोटरडम अहोय RTM स्टेज ट्वी जेनरेशंस एन पोडियम एन अनवर्गेटलिके अवंड मिस deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chote Mia live in concert Udit

0: रावण लंका फूंक दिए जाकर गढ़ लंका, हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

इस गाने में तो आपने पूरी रामायण ही सुन ली। बेहतरीन गाना आपने सुना उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में फिल्म भवाई से। और अब आप सुनिए फिल्म अजनबी से। मुझको नींद आ रही है सोने दो, दिल कह रहा है कुछ होने दो।

मृगम अलकयाच ने गौर कोरस की आवाज में आपने सुना ताल पे जब ये जिंदगानी चले फिल्म रेफ्यूजी से। ये पहला फिल्म था अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, फिल्म हेलमेट से। गोल्ड बॉय और शिप्रा गोयल की आवाज में आप सुनिए बर्बाद।

रहना है तेरे दिल में, बस आउट द फिल्म मुझे कुछ कहना है, एंड आउट द फिल्म काबिल कॉम्ट काबिल हूँ मैं, खुजों दो जुबेन नौटियाल एंड पलक मुच्चल।

आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदे मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने, तुम न मारो तो तुमको कसम, was uit de film Chori Chori en is gezongen door Elka Yachnik en Babu Supriyo. Gaan we dan verder met uit de film Chehre, Rang Darya.

खबर नहीं वह सायद फिल्म दोस्ताना ने इसको सॉन्ग दो शफ़ाकत अमानत अली विशाल ददलानी एंड श्रेया घोषाल आयो द फिल्म दिल का रिश्ता कम से फोक मत लीजिए इन प्रोग्रामा गीतों के लहर फिया रेडियो SBS गजोंग दो अलका याचनिक एंड बाबुल सुप्रियो कॉम्ड दिल हाय दिल मेरा दिल।

जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले इस सॉन्ग अदूर अमित मिश्रा एंड अभिजीत एंक्वाम आउट द फिल्म जवाने जाने मन एंड आउट द फिल्म अभिमान कॉम्ट सॉन्ग अदूर लता मंगेशकर तेरी बिंदिया रे।

फिल्म अभिलाषा से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में वादिया मेरा दामन, और अब आप सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म हम तुम पे मरते हैं से। ये एक फिल्म है उर्मिला मातोंडकर और गोविंदा का, और वो भी टाइटल सॉन्ग गाना है हम आप में कुछ हो गया, हम तुम पे मरते हैं।

इंदु की जवानी है फिल्म का नाम और अभिनेत्री है कियारा अडवाणी। गाने के बोल हैं हीले टूट गए और गाने वाले हैं बादशाह और आस्था गिल। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है मुकेश दा की आवाज में। फिल्म छोटी बहन से आप सुनिए जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: ऐसी मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया?
1: झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
2: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, ठीक है,
3: मेरे पास वक्त नहीं है बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
1: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है, बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
3: होता है तो होने दो।

कसम से सनम प्यार तुमसे करते थे करते हैं हम उम्र भर करते रहेंगे इस अर्ध फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं दिस प्रार्थना लीजिए इसको सॉन्ग दूर कुमार सानू एंड अनुराधा पौडवाल उत्फुल्लित लीजिए इसको सॉन्ग दूर अभय एंड श्रेया घोषाल अर्ध फिल्म पानीपत कुंभ सपना है सच है।

0: छोटे मियाँ लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑफ हेट पोडियम बिलीव एन अनफॉरगेटेबल अवन फॉल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्रख्तगे म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम टॉप निवो
1: रुक जाओ दिल दीवाने
0: सोंदाग 15 नवंबर इन रोटरडम अहोय आरटीएम स्टेज ट्वी जेनरेशंस एन पोडियम एन अनफॉरगेटेबल अवन मिस deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Bade Mia Chote Mia live in concert Udit Narain en Aditya Narain. For more info

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.